अनुसार ये पता चला है कि 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोनियों में छुपा कर MG गाड़ी में रखी गई। और मजे की बात ये है, ये कैश जिसे मिला वो पैसा उस

0: roll camera and action.
1: आदि वो लोग को शूट कर रहे हैं,
2: हमारे बिना शूटिंग ऐसे कर रहे हैं?
3: ये तो अपना गाना, या कम ऑन, बॉल की शूटिंग हमारे बगैर।
4: आदि